देवगंधार दा केवल इको शब्द अपने हर पह बिनती कही है, बाकी सारी बाणी देवगंधारी विच है। उपरोक्त दोवे राग वखो वखरे स्वरूप रखते हैं। देवगंधारी का रूप गुरमत संगीत तो बिना भारतीय संगीत विच अजे तक प्रचलित नहीं होया। इस राग विच विचरदे पता लगेगा कि खुशी चरण शरण विच है, मां दे चरणा विच है, झूठा प्यार छड्डन विच है। इस विच दोनों दहवत दोनों निषाद लगते हैं अते होर स्वर शुद्ध लगते हैं। आरोह विच गंधार अते निषाद वर्जित हैं। वादी